0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।
1: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
0: Om Namah Shivaya.